0: welcome to analysis of day 9 of Commonwealth Games 2026. The day bore witness to India's medal winning exploits in judo and athletics.
1: खेलों के नवे दिन भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर था और भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दम खूब दिखाया. अपने दमकते प्रदर्शन से पदकों की संख्या बढ़ाई और साथ ही और तमाम पदकों की आस भी जगा दी. देशवासियों को गर्व से सीना चौड़ा करने का अवसर दे दिया. अब जब खेलों ने अपने समापन की ओर बढ़ने का सफर आरंभ कर दिया है, भारतीय एथलीट इस समय अपने प्रदर्शन को शिखर पर ले जाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं. पदकों की झोली जितनी भारी हो सके, उत्साह, उल्लास, गर्व और आनंद होने के क्षण उतने ही ज्यादा. बॉक्सर्स ने तो कमाल कर दिया, एक के बाद एक के बाद एक धमाकेदार जीत दर्ज कर फाइनल में एंट्री ली. एथलेटिक्स में हमारी आंखों के तारे नीरज चोपड़ा तो थे ही और उनके और साथी भी मैदान में थे. इसके अलावा भी बहुत कुछ था, तो चलते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर. नवे दिन का पूरा लेखा जोखा.
0: It was a memorable day for India in boxing and judo, but with javelin action scheduled later in the day, the spotlight, even in our show, is understandably on Neeraj Chopra.
1: जेवलिन थ्रो की स्पर्धा बहुत कांटे की होने वाली है, ये बात तो क्वालिफाइंग चक्र में ही तय हो गई थी. नीरज चोपड़ा, श्रीलंका के रुमेश थरांगा, अरशद नदीम और पीटर्स एंडरसन, कई सितारे थे मैदान में. डबल ओलंपिक पदकधारी, एशियाई चैंपियन और भी न जाने कितने खिताब. नीरज चोपड़ा ने अपना पहला थ्रो 80.97 मीटर फेंका, दूसरा थ्रो 85.83 फेंक दिया, जो इस सीजन में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन. लेकिन थरांगा ने 89.75 मीटर भाला फेंक दिया. इसके बाद नीरज ने अतिरिक्त ताकत भरने की कोशिश तो की, लेकिन अंतिम दोनों थ्रो उनके फाउल हो गए. नीरज दूसरे स्थान पर रहे, रजत पदक. लेकिन साथ में तारीफ कीजिए जयपुर के यशवीर सिंह की. कभी बांस के भाले से सीखने की शुरुआत करने वाले और नेशनल लेवल के जैवलिन थ्रोअर पिता के लायक बेटे यशवीर ने अपने अंतिम प्रयास में पूरी ताकत लगा दी और 85.41 मीटर दूर भाला फेंक दिया, उनके करियर का सबसे अच्छा थ्रो. और इस थ्रो ने उन्हें बैठा दिया तीसरे स्थान पर, यानी रजत पदक और कांस्य पदक दोनों भारत के हिस्से में. एथलेटिक्स में डेकथलान स्पर्धा बहुत कठिन स्पर्धा मानी जाती है. भारत के तेजस्विन शंकर को यही स्पर्धा पसंद है.
2: मैं ऐसे चैलेंजेस को हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ कि नए नए चैलेंजेस मैं ऐड कर सकूँ और थोड़ी एक्साइटमेंट आए मेरी खुद की परफॉर्मेंस से. कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा गोल ही रहेगा कि डिकैथलॉन इवेंट में कम्पीट करना, क्योंकि वो सबसे टफेस्ट इवेंट होता है ट्रैक एंड फील्ड का. दो दिन आप कम्पीट करते हैं.
1: तेजस्विन का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा पहले सत्र में. पोल वॉल्ट खत्म होते समय वे चौथे स्थान पर सरक गए. जेवलिन के बाद एक बार फिर तीसरे स्थान पर आ गए और 7,976 अंक, आप इसको बुरा तो नहीं कह सकते. और ये अंक उनको तीसरे स्थान पर लाने के लिए पर्याप्त थे और साथ ही कांस्य पदक उनका हो गया. 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भारतीय दल अंशा बाबू, रचदीप कौर, विशाल टीके और राजेश रमेश हीट नंबर 2 में चौथे और कुल मिलाकर 7वें स्थान पर आए और अंतिम 8 में यानी फाइनल्स में जगह बनाने में सफल रहे. वहीं 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में

0: संतोष कुमार टी 50.37 सेकंड के साथ सातवें और यशाश पलाक्ष आठवें यानी अंतिम स्थान पर रहे।
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडोकास के लिए 31 जुलाई की शाम ऐतिहासिक रही, जहां अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने अपनी अपनी कैटेगरीज में गोल्ड मेडल्स हासिल किया। यामिनी मौर्या ने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जिससे जूडो कंपटीशन के पहले दिन भारत को 3 मेडल्स मिल गए। अस्मिता ने विमेंस 48 केजी कैटेगरी में इतिहास रच दिया। फाइनल में कैनेडा की हेडी क्वाश के खिलाफ खेलते हुए उनका मैच काफी कठिन रहा और गोल्डन स्कोर तक गया, लेकिन अस्मिता ने इस निर्णायक मोड़ पर अपने नर्व्स को होल्ड किया और इस वेट कैटेगरी में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड पक्का कर दिया। साउथ त्रिपुरा के बेलोनिया की रहने वाली 23 साल की अस्मिता के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। एक बाइसिकल मैकेनिक की बेटी, अस्मिता पहले 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लेती थी, जिसके बाद उन्हें जूडो से जोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्मिता का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है। 2026 एशियन चैंपियनशिप्स में 5वां पोजीशन हासिल करके उन्होंने पहले ही दिखा दिया था कि वो एशिया के सबसे बेहतरीन जूडो खिलाड़ियों से भी मुकाबला कर सकती हैं। ग्लासगो में उन्होंने इसी उम्मीद को कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड में बदल दिया। इसके बाद हर्ष सिंह ने मेंस 60 केजी कैटेगरी में भारत के लिए जूडो में दूसरा गोल्ड अर्जित किया। इस प्रतियोगिता से पहले उन्होंने टोक्यो और ताशकेंट ग्रैंड स्लैम्स और एशियन चैंपियनशिप्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट से अच्छा अनुभव हासिल किया था।
2: बहुत अच्छा फील हो रहा है इंडिया के लिए गोल्ड जीतने के लिए। मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने के लिए और मैंने गोल्ड जीता, बहुत अच्छा लग रहा है। मेडल अपनी माँ को डेडिकेट करूंगा मैं।
1: इसके अलावा यामिनी मौर्या ने विमेंस 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर जीतकर भारत को तीसरा मेडल दिलाया। फाइनल में इंग्लैंड की एसेलिया टोपरा के खिलाफ यामिनी ने कड़ी टक्कर दी, जो गोल्डन स्कोर तक गई, लेकिन अंत में इंग्लिश खिलाड़ी ने पेनल्टी के जरिए जीत दर्ज की। उनका यह ग्लासगो सिल्वर उनके पदकों के संग्रह में एक अहम अंतर्राष्ट्रीय मेडल जोड़ता है।
0: ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाजों ने कमाल के मुक्के बरसाए हैं। 10 मुक्केबाज सेमीफाइनल चक्र में पहुंचे। जो भी भारतीय बॉक्सर रिंग में उतरा, अपने मुक्के हवा में लहराता हुआ जीत का निशान बनाता ही रिंग से बाहर आया। और शुरुआत की 22 साल की प्रीति पवार, जिनके सामने थी जाम्बिया की कैथरीन मुआवे। बेतरह मुक्कों की बरसात में कैथरीन का सारा प्रतिरक्षण बहसा गया। 5-0 से जीत हासिल कर भारत का दिन का खाता खोला। 80 किलोग्राम में थे अंकुश पंघाल, कनाडा के जोशुआ ओफुरी के विरुद्ध पहले राउंड से ही धावा बोल दिया और तीनों राउंड में लगातार हावी रहे। 5-0 से एक और आसान जीत। तो भरा राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुंधति चौधरी क्यों पीछे रहती? उन्होंने वेल्स की रोजी इक्लेक्स को परास्त किया। अरुंधति ने 4-0 के निर्णय से इस बाउट को जीत लिया और फाइनल में एंट्री की।
3: द विनर इन द ब्लू कॉर्नर अरुंधति चौधरी।
0: जैस्मिन हुडा के विरुद्ध थी लेसोथो की रेप्लांग मासलेला। ये फाइट इसलिए बहुत दिनों तक याद रहेगी कि सिर्फ एक राउंड चली। जैस्मिन के जबरदस्त पंच और कॉम्बिनेशन प्रहार सीधे उनके चेहरे पर, वो गिर गईं। रेफरी ने फाइट रोक दी, कहा कि अब आगे खतरा है, यानी पहला नॉकआउट निर्णय। जदुमणि सिंह नामीबिया के फिलिप हाउसेप के विरुद्ध, वो रिंग में रेड कॉर्नर में थे। वही कहानी जो सुबह से शुरू हुई थी, उसका एक और अध्याय जदुमणि ने भी लिख दिया। 51 किलोग्राम भार वर्ग में जायंट किलर कही जाने वाली भिवानी की साक्षी चौधरी ने कनाडा की अंबर जेनवाल को 5-0 से ही हराया।
4: इट वाज अगेंस्ट कनाडा, ओपोनेंट वाज लिटिल शॉर्टर, सो आई हैव रीच एडवांटेज, सो आई मेंटेन माय डिस्टेंस एंड प्लेड काउंटर एंड आई सक्सेड इन दैट। आई वन द बाउट यूनैनिमसली 5-0।

0: want to represent my country in Olympics and want to win gold medal for my country.
1: लगा कि विपक्षी क्या भारतीय मुक्केबाजों के आगे संघर्ष कर ही नहीं पा रहे हैं. शायद ये बात सच भी थी, क्योंकि अगली बाउट में प्रिया घंघास ने इंग्लैंड की लूसी किंग को एक बार फिर तीनों राउंड में रिंग में तिगनी का नाच नचा दिया. लवलीना बोरगोहेन, ये नाम ही काफी था तरोना खानम के विरुद्ध. सुप्रसिद्ध लवलीना ने 75 किलोग्राम में आसानी से जीत दर्ज की, तो सचिन सिवाच को तो शुरू से ही डार्क हॉर्स कहा जा रहा था. वेल्स के ओवन हैरिस को 5-0 से एक और जीत. अंतिम बाउट में 90+ किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेलवाल थे पॉल निगल के विरुद्ध, ये भी 5-0 से जीते. तो बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन, रिजल्ट 10-10, यानी सभी मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए, एक अकल्पनीय सी बात. लेकिन आज तो सारी निगाहें स्वर्ण पदक की संख्या गिनने पर ही लगी होंगी.
2: सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम में भारतीय साइक्लिस्ट के लिए 31 जुलाई का दिन चुनौतीपूर्ण रहा. मेंस 4000 मीटर इंडिविजुअल पर्स्यूट में दिनेश कुमार ने 4:29.267 का समय दर्ज किया और क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग्स में 17th पोजीशन पर रहे. वहीं हर्षवीर सिंह सिखों ने 4:35.524 का समय रिकॉर्ड किया और 19th पोजीशन पर रहे. चूंकि सिर्फ शीर्ष के चार राइडर्स ही मेडल रेसेस में आगे बढ़ते हैं, इसलिए दोनों इंडियंस क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गए. वहीं मेंस केरिन में भी रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम और जेम्स सिंह अपनी अपनी फर्स्ट राउंड हीट से डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाए. तीनों को रेपेचार्जेस के जरिए एक और मौका मिला, लेकिन कोई भी सेकेंड राउंड में नहीं पहुंच सका. हर्षवीर बाद में मेंस एलिमिनेशन रेस फाइनल के लिए वापस लौटे. वो स्टार्टिंग स्टेजेस में रेस में बने रहे, लेकिन अंत में एलिमिनेट हो गए. बोल्स में भारत के लिए कल का दिन सफल रहा, जहां राउंड 4 में मेंस पेयर्स और विमेन सिंगल्स दोनों में सीधे सेट्स में जीत हासिल हुई. मेंस पेयर्स सेक्शन बी के मुकाबले में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार ने फॉकलैंड आइलैंड्स के इयान बार्न्स और ओलिवर थॉमसन की जोड़ी को 2-0 से हराया. भारतीय जोड़ी ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करते हुए पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया. इसके बाद उन्होंने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत की और दूसरे सेट में 10-1 से एक तरफा दबदबा बनाते हुए आसान. इस नतीजे ने भारत को क्वालिफिकेशन की रेस में मजबूती से बनाए रखा है. नवनीत और दिनेश इस सेक्शन में इंग्लैंड की बराबरी पर पहुंच गए हैं. हालांकि बेहतर शॉट डिफरेंस के कारण इंग्लैंड अभी भी आगे है, जिससे उनके आखिरी सेक्शनल मैच पर काफी कुछ दाव पर लग गया है. विमेन सिंगल्स में नयन मोनी साइकिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया. जाम्बिया की मिल्ड्रेड के खिलाफ पहला एंड गंवाने के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की और पहला सेट 17-2 व दूसरा सेट 11-2 से जीतकर 2-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया. साइकिया अपने अभियान का अंत कल साउथ अफ्रीका की ब्रिजिट के खिलाफ मैच खेलकर करेंगी.
1: आज पुरुष ट्रिपल जंप में पदक के लिए कूद लगाएंगे प्रवीण चित्रावल और सेल्वा प्रभु. महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में प्रियंका और रवीना होंगी. पोल वॉल्ट में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे. पुरुषों के 5,000 मीटर के फाइनल में गुलवीर सिंह होंगे और मिक्स की 4x400 रिले के फाइनल में होंगे अंशा बाबू, रजदीप कौर, विशाल टीके और राजेश रमेश. इसके अलावा पैरा खेलों में 1500 मीटर पुरुष T54 फाइनल में रमेश षणमुगम होंगे और पुरुषों के शॉर्टपट F57 यानी पैरा शॉर्टपट में शुभम जुआल और सोमन राणा होंगे भारत की ओर से.
2: टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग, वी आर स्टेपिंग इनटू द रिंग टू फाइट फॉर गोल्ड इन द फाइनल्स टुडे आर 10 इंडियन बॉक्सर्स. साक्षी 51 kg, प्रीति 54 kg, जैस्मिन 57 kg, प्रिया 60 kg, अरुंधति 70 kg and Lovlina Borgoin 75 kg in the women's categories, alongside Jadumani 55 kg, Sachin 60 kg, Ankush 80 kg and Narinder Berwal 90 kg in the men's division. Moving on to judo, we're stepping onto the mat today are Unnati Sharma women's 63 kg and Inun Ganbi women's 70 kg in the women's categories, alongside Harsh Tokas men's 81 kg and Karanjit Singh Mann men's 90 kg in the men's division, with all four fighters looking to battle their way through the rounds and contend for medals. In action in track cycling today are David Beckham, Ronaldo Singh and Rohit Singh in men's sprint, apart from Harshveer Singh Sekhon and Dinesh Kumar in men's 10-kilometer scratch race. In bowls, the men's pairs duo of Navneet Singh and Dinesh Kumar will be in action for round 5 of sectional play versus England, with the pair looking

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह